साहिब जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवा साहिब जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखा सा धन धन सत संगत।

संगत वासा निर्बाण मुर्दा होए मुरीद आप सिंजाण वाहिगुरु जी का खा।

दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सर्व सांझीवालता दे राहबर ज्ञान दे भंडार जगत गुरु शब्द अवतार भगत वशल पतित पावन गुरता गद्दी तख्तां ते विराजमान हो रहे सतगुरु दसाहां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी हजूरी गोद दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यार वाली गुरु सवारी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ सतगुरां ने महान बख्शिश कीती है संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना दे विच आप जी जुड़ बैठ के सत्कार जो कीर्तनिया पासों रबी गुरबाणी दे कीर्तन बहुत ही अदब सत्कार सहित सरवण कर रहे सी उपरंत जिहड़ा समा प्राप्त होया है लड़ीवार भाई गुरदास जी दियां वारां दी विचार जो निरंतर आप जी सरवण कर दे अज सत्तवीं वार दी अठारवीं पौड़ी दा पाठ आप जी ने सरवण कीता। भाई गुरदास जी ने जो उदाहरण दे के सेवक दे जीवन नू समझाउण दा जतन कीता है अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर आप बेअंत है और उसे दा सिरजिया होया है सारा संसार पसारा मुख रूप दे विच अज जिहड़ी दलील दित्ती है उदाहरण दित्ती है वो आकाश दी है अंबर सारी दुनिया दे अंदर संसार दे अंदर आकाश अंबर फैलिया होया है और समझाउणा की चाहुंदे ने अखीरली पंक्ति दे विच जिहड़े तत् दी गल भाई गुरदास जी कर रहे ने पार ब्रह्म सतगुर पुरख साध संगत वासा निर्बाण है साध संगत दे विच पार ब्रह्म दा निवास है सतगुरु दा निवास है और साध संगत दे विच जिहड़ा सिख जगयासु जुड़िया होए मुरदा होए मुरीद संजाणा है जिहड़ा साध संगत दे विच जुड़दा है उहनू भाई साहब कहिंदे ने उह मुरीद है उह सेवक है मुरीद कहिंदे ने सेवक नूं ते मुरीद दे लक्षण की ने मुरीद दा जीवन किहो जिहा हुंदा है उहदे गुण की ने क्योंकि मनुख दी पछाण गुणा ते अवगुणा करके हुंदी है शरीर तां सारिआं दे समान बराबर ने शरीर करके बहुती मनुख की पछाण नहीं आती। भाई गुरदास जी ने एक कवित दे अंदर कुछ दलीलां दित्तियां उदाहरणां दित्तियां समझाउण दे लई मैं तुहाडे समक्ष रख दे और गल समझ दे विच आउण वास्ते बड़ी लाजमी है कि जीवन जो सिख दा गुरसिख दा जगयासू दा मुरीद सेवक किहो जिहा हुंदा है विचार वह बख्शिश कर रहे ने गुरबाणी दे विच जिवें सतगुरु ने फरमान किया सेवक सेव करें सब तेरी जिन शब्द है साध आया हुण शरीर करके ते सारे एको जिहे ने समान नज़र आउंदे ने

0: ठाकुर ने फिर आख्या। डरदा डरदा खलो गया। हालत बहुत चंगी नहीं सी, गरीबड़ा सी, धन इना नहीं सी, दौलत इनी नहीं सी, पर उदे ना हुंदियां भी गुरु नाल इना प्यार, इना प्यार, भावें भुखा रह जावां, बच्चे भुखे रह जावन, पर मेरे मालका तेरे दर ते मैं भेटा लैके जरूर आना है। आखो सतनाम
1: वाहिगुरु।
0: ऐसे गुरसिख भी है ने गुरु प्यारे, सतगुरु कहन लगे अगे आ सतगुरु दे अगे आ खलोते चरणा ते फिर नमस्कार किया। नाम की है भाई तेरा, शरीर कंब रहा, साहब जी मेरा नाम सज्जा है, सज्जा ये फिर सज्जी कमाई तुयो करने, अखियां चो हंजू ने जवाब नहीं दे पा रहे, उत्तर नहीं दे पा रहे, ये फिर सच्ची कमाई है ना, जिस विचों भी तू दसवंद लैके आने, कैसा गुरसिख होवेगा। झोलियां ते गुरु ने संसार दियां इनियां भर दित्तियां ने, इनियां भर दित्तियां ने, पर गुरु वास्ते दसवंध कट्टण वास्ते कोई तैयार नहीं होता। इत धारणा बना लो ना कि गुरु लई दसवंध देना ही देना है। ते मेरा वायदा जे ते गुरु ने जे होर दस गुणा करके तुहाडी झोली नाना पाया, फिर तो मनोगे साहब कह लगे सज्जा की चाहिए। पाशा मैं गरीब बना, रोटी भी मसे पूरी होती, नहीं भुखा प्यासा रह के भी एडी गरीबी होने के बावजूद भी भाई साहब जी का एक वचन है भाई गुरदास जी का, आया सुनया बिदर दे बोले दुरजोधन हे रुखा, कर असाडे छड़ के बोले देकर जाए सुखा, भीखम द्रोणा करन तज सभा सिगार वटे मानुखा, झुकी जाए बलायन सबना दे जी अंदर दुखा, हस बोले भगवान जी सुनो राजा होए सनमुखा, तेरे भाव न दिस सही मेरे ना ही अपदा दुखा, भाओ च वेहा बिदर ते होरी दे च चाओ ना चुखा, गोबिंद भाओ भगत दा दुखा। दुर्योधन दे महल छड़ के कृष्ण ने अपना रथ बिदर वल मोड़ लिया सी, भाई साहब कह रहे ने बचन सजिया की चाहिए। पातशाह मैं बड़ा गरीब ते मेरे पातशाह पता की कह रहे पूरे आवे ना, तू गरीब नहीं है, गोविंद सिंह का सिख कदी गरीब नहीं हो सकता, वो अमीर का अमीर है। बोलो श्री सतगुर का सिख कदी गरीब नहीं, जिदे अंदर वो भावना है ना, गुरु का प्यार है, वो कदी गरीब होया। जिदे अंदर कलगी वाले की गुरसिखी कुट कुट के भरी हुई है, कितना गरीब हो सकता है। बाकी दिए विचार कर भाई साहब के बचन एक बार फिर पढ़ लो सारे। तिस कोल कुमार

0: अरंड के तने अंडी दा बूटा अंडी जेते जो तेल भी निकलता है वो भी बूटा किते ना लोग पे आ ते हुण चंदन दी जड़ी खुशबू सी ना उधर भी आ गई। बोलो श्री
1: वाहगुरु।

0: जीवन विच आ जानी चाहिदी है ताकि तेरे को नेड़ों लंघे ना निहाल हो जाए आखे आ कलगी वालिया केव जा गुरसिख बनाए क्यों जी दात बख्शी गुरसिख होवे ते एहो जा होवे नहीं ते ना होवे सतसंगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु
0: ऐसिया खुशबुआ आन गुरसिख दे कोलो सोनी दस्तार होवे सोनी रफ्तार होवे सोनी अवतार होवे बोलो सिरे आज सिद्धांत सिक्की दा ये ते सिद्धांत गुरसिख दे झोली विच है ने फिर साडियां विसाखियां मनाइयां भी सफल ने आउना साडा सफल है यात्रा सफल है सतगुर दे गुण गाए सफल ने दीदार कीता गुरु ग्रंथ साहिब दा सफल है

स्वर थोड़ा जा ऊंचा है पर गाया जा सकता है, क्योंकि कई कंपोजिशन दे जिहड़े अंतरे हैं वो नीवे होंदे ने, पर ये जिहड़ी बहर है बनी इसे तरह ही करो कृपा सारे।

0: करो
1: सुख तेरा दिता नहीं है।
0: तुसी सारे बच्चे अगे आ जाओ और अगे आ ताकि तुहाडी आवाज मेरे कान च पवे जिहड़े हो शाबाश सतगुरु मेहरा करन तुहाडे ते। इन्ना ही सानू रस्ता विखाउणा है कि साडा भविष्य है। जे असीं भटक भी जावांगे ना तो इन्हां सानू लै आउणा है।

सुन मेरी कामणी पार उतारा हुए दयाल तीरा नाम तरा सतगुर बाण जाऊं रहाऊं।

0: सगल जगत चंगयाइया बुरियाइया वाचे तर महदूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मखूजल केती छुट्टी नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छप शांत व प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख भेको कह ना सकत कहे अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश अमतोज कहि जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहन गणिज जय त्रे पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तब सर्वनाम कथे कमन कर्म नाम बरनत सुमत पुयंग प्रयात शांत नमस्तवंग काले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग नूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काय नमस्तंग जाय नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग
1: अनामे नमस्तंग नमस्तंग अनामे नमस्तंग अतामे नमस्तंग अकर्मं नमस्तंग अपरमं नमस्तंग नमस्तंग अतामं नमस्तंग नमस्तंग अकर्मं नमस्तंग अधर्मं नमस्तंग अनामं नमस्तंग अतामं नमस्तंग अजीते नमस्तंग अबीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगाधे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग स्वेका नमस्तंग अनेका नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूबे नमस्तंग नरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्वेशे नमस्तंग निर्दामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग नरतुते नमस्तंग आपुते नमस्तंग आलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग नरतापे नमस्तंग अतापे नमस्तंग धर्माने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग दरबर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगमे नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपादे नमस्तंग अमजे नमस्तस्त अजमे अधिसंग अधिसे नमस्तंग अभिसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमः सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देव नमस्तंग अभिव नमस्तंगाजन्मे नमस्तंग सुवर्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वभौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तंगाभरणे नमस्तंगाभरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग गृतारंग नमो सर्वतन्दे नमो सहबन्दे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनन्ते नमस्तंग महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुख नमो सर्वभुख नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जो जोगे नमो भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शांत व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अबू है अलेख है भेख है नाम है काम है अधेह है अभी है जीत है पीत है तरमान है दान है तिरवर्ग है सर्ग है नील है नाद है अजेय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है वर्ण है अगंज है पंज है चूज है चंज है मीक है रफीक है तंध है बंध है नरबूज है सूज है अकार है जाल है ला है जा है अनंत है महंत है नीक है नरसरीक है नरलंब है सांब है

दूत है, नास हैं, उदास हैं, तंध हैं, बंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, नास हैं, प्रकाश हैं, निचिंता है, सुनिंदा है, लिख हैं, दिख हैं, लिख हैं, पीख हैं, अटा हैं, गा हैं, संभ है, गम है, नील है, नाद हैं, नित है, सुनित है, अजात हैं, अजाद हैं, चरपड़ छंद द्वाप्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राण, सर्वं त्राण, सर्वं कर्म, सर्वं धर्म, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल संद्वा प्रसाद, नमो नरकनासे सदावं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विमुक्ते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाद स्वरूपे नृभावे अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न मुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता नृसाक श्रीका मितो मीका सदावं प्रभा अजा है अजा है भगवती शांत व प्रसाद के जाहर हजूर है के हाजर हजूर है हमेशर सलाम है समस्तल कलाम है के साहब तमाक हैं के संतराग हैं के कामरा करीम है के राज करीम है के रोजी देहांत है के राज कर हिंद है करीम उल कमाल हैं के सन जमाल हैं गनीम उल खराज हैं गरीब उल नवाज है हरी फुरश गन है रासल फिकन है कलंगं बरनास है समस्तन नवास है अगंजल अग्नीम है जय करहीम है समस्तल जुबा है के साहेब किरा है के नरकं बरनास है पृथ्वील प्रवास है पृथ्वील प्रवास है के नरकं बरनास है बहस्तल नवास है के सर्वल गुमन है मिसल दरवन है तमामल तमीज है समस्तला जीज है परम परमीश है समस्तला दीस है अदेसला लेखा मेसला पीखा जमींदर जमा है अमीकुल इमा है करीमल कमाल है के जुस्त जमाल है के अचरंग प्रकाश हैं मितो सुभाष हैं के अजबा स्वरूप हैं मितो भभूत है के मितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के चरंग अरंग है मितो भंग है मधुपार छंद व प्रसाद मोन मन भरणा गुणगण मदाम अर भरिया गंज हरणा ब्रह्मांजे अनगण भरणा मन मन सलाम हरण रिया खंड भरण रिया मंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गौन कर्ण परणा जल थल मदा मन शिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत्म सुधार जल थल या मंड दिसवे अपंड जल थल महन दिसवे बेअन अनुभव अना त्रेता दुरास आजान बाहु कै सदाहु ऊंकार या कथनी अनाद खलखंड खया गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरणाम छिजगा आज जना बात अनचंजगा दिनरंज भा धन टुट भंडार ठड़िया पार आडीठ धर्म आटीठ कर्म आन ब्रण अनंत दाता महंत हर भूल मना शंत व प्रसाद करुणाले है अरकाले है खलखंडन है मैं मुंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है त्रेत के तरण है जग के करण है मनमानी है जगजानी है सर्वंबर है सर्वंकर है सर्वपासी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंबर है सर्ववेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मंड सह खड़खंड सह परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं कृता कृत हैं अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमित वेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरदायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नरपदायक है सर्वपायक है
ਅਪੰਜਨ ਹੈ ਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਵਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪਜਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰਹਿ ਹਰਤਾ ਰਹਿ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਾਸ ਹੈ ਜਸ ਕੀ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਬਰਿਆਦ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਨਰਿੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਸਾਮ ਸੰਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗਾ ਤਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਪੁਰ ਪੂਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਾ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਨ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਨਰਿੰਦਰੇ ਨਾਦੰ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸਾਸੇ ਨਮੋ ਬਾਮੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਏਕ ਸ਼੍ਰੀ ਛੰਦ ਅਜ ਅਲ ਅਭਯ ਅਭਯ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗਾਂਜਾ ਪਾਂਜਾ ਲੱਖ ਪੱਖ ਕਾਲ ਦਿਆਲ ਲੇਖਾ ਪੀਖਾ ਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੂਨੀ ਅਮੂਨੀ ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗਾ ਪਰਮੰਗਾ ਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਬਰਿਆਦ ਛੰਦ ਨਮਸਤਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਹਿਦਾਰੰ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਏ ਵਿਭੂਤੇ ਗਜਾਏ ਬਗਨੀਮੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਕਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਜੰਭਵ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਵਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ

ओदे आवे आसकर जाय निरसे कित फल फिके फुल पक बके कम ना आवे पत मिठत नीमी नानका गुण चंगियाई तत

जुगोहु जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहुर सर्ब कला भरपूर सर्ब सांझी वालता दे राहबर होट ब्रह्मंडा दे मालक पातशाह दसाहां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यार वाली गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ अमृत वेले दे सजे हुए दीवाना दे विच जुड़ बैठ के सत्कार जो कीर्तनिया पासों रबी गुरबाणी दे कीर्तन हासा की वार दे कीर्तन अदब सत्कार सहित आप जियां ने सरवण कीते ने आओ उपरंत अमृत वेले सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो पावन पवित्र मुख बाक बख्शिश कीता है पावन विचार सांझी करनी तनासरी राग दे विच आरंभता वाला शब्द है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का उच्चारण किया होया पावन अंग 660 ते सुशोभित है। आरंभता दे विच संपूर्ण मूल मंत्र वंदना दे रूप विच सतगुरां ने बख्शिश किया विशेषण अकाल पुरख परमात्मा दे चार पदयां वाला ये पावन शब्द है तनासरी महला पहला कार पहला चौपदे पहले घर दे विच गायन करन वास्ते ताकीद चार पदयां वाला ये शब्द तनासरी राग गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे अमृत बचन एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर और एक है और सबना दे विच एक रस व्यापक है नाम सदा लई अटल सब कुछ करन वाला है और करके साज के सारियां विच व्यापक है डर किसे दा नहीं और वैर किसे नाल नहीं सारियां दा सांझा है और सांझा उपदेश सांझियां दातां सारियां नूं बख्शिश करदा है ਉਹ ਸਕਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ

ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜੇ।
जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार। जियो कहिंदे ने जिंद आत्मा, डरत है ये डरदी है, ते डर उसे दे अंदर हुंदा है जिहड़ा कमजोर होवे, जिहड़ा कमजोर है वह डरदा है। महाराज कहिंदे ने साडी जिंद डरदी है, ते जदों अंदर डर होवे फिर मनुख पुकार करदा है, बेनती करदा है। कमजोर मनुख होर की करे, वह केवल पुकार कर सकदा है, वह केवल बेनती कर सकदा है। मनुख आत्मक तौर ते कमजोर है, इसलिए अरदास कर रहा है, बेनती कर रहा है। जियो डरत है अपना, साडा आत्मा साडी जिंद ये डरदी है। कैस्यों करी पुकार, ते महाराज कहिंदे ने सानू ते पुकार करनी भी नहीं आउंदी, किवें करिए। कैस्यों करी पुकार, किवें याद करिए, बेनती किवें करिए, और किसे अगे करिए। ते साहिब कहिंदे ने पुकार करन दे लई अंदर डर पैदा होया, ते जदों डर होवे फिर अपने आप पुकार कीती जांदी है, अपने अंदरों अरदास निकलदी है। अध्यात्मक जीवन दे अंदर ये सच्चाई है, भावें अज अरदास करन दे लई साढ़े कोल लिखती रूप दे अंदर शब्द मौजूद ने, पर जिहड़ी अरदास दी भावना है वो शब्दां दी गुलाम नहीं है। बेनती जो है वो किसे अखरां दी मोहताज नहीं है। अरदास तां अपने आप अंदरों प्रगट हुंदी है, अपने अंदरों अपने आप अरदास निकलदी है, और जदों अपने आप अंदरों अरदास प्रगट होवे उस मालक तक पहुँचदी है जिहड़ी जिंद दा अकाल पुरख परमेश्वर आप मालक है, उत्थों तक पहुँचदी है। सतगुरु कहिंदे ने कैस्यों करी पुकार, पुकार करिए किसे अगे करनी है। दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार। याद उसनों करना है, बेनती उस अगे करनी है जिहड़ा साढ़े दुखां दा नाश करन वाला है। दुख विसारण, दुखां नूं विसारण वाला है, उसनों सिमरना, और जिहड़ा सदा लई दातां देण वाला है, हमेशा दातां वंड रहे है। दातार कौन है? जिहड़ा सारियां नूं दातां दे रहे है। मनुख किसे नूं की दे सकदा है, और जे दे भी दवे फिर मनुख उहनूं चेते रखदा, याद रखदा, मैं इहदी मदद कीती, मैनूं इह कुछ दित्ता। अकाल पुरख वाहिगुरु ऐसा दातार है, वो दे रहे और सदा लई दे रहे, देण तो बाद चेते नहीं करदा, याद नहीं रखदा, बस वो दे ही जा रहे। इसलिए महाराज कहिंदे ने वह दातार है, सारिआं नूं दातां देण वाला, दुखां दा नाश करन वाला है। मनुखी जीवन दे विच मुख रूप दे अंदर चार तरह दे दुख ने। मनुख भावें शरीरक दुखां नूं दुख मन लैंदे, शरीर ते कोई रोग आ गया, कोई दुख आ गया, बस उसे नूं मुख रूप दे अंदर मनुख ने वड्डा दुख समझिया होए,
पर महाराज ने बाणी दे विच चार दुखां दा जिक्र किया और सब तो पहला जिहड़ा वड्डा दुख है वह विछोड़े दा दुख है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, भुख दा बड़ा वड्डा दुख है। विछोड़े दे अंदर मनुख भावें छकिया होवे, पेट तो रजिया होवे, विछोड़े दे विच बड़ा वड्डा दुख है। शरीर दे दुखां तो भी विछोड़े दा वड्डा दुख है। और साड़ी जिंदगी दे अंदर मनुख परमात्मा तो विछड़िया होए, किरत करम के विछड़े, इस दुख दा जिक्र है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, भुख भी दो तरह की है। एक मनुख पेट तो भुखा होवे ओह भी दुख है। एक मनुख हो है जिहड़ा पेट तो भोजन तो रजिया होया, तृष्णा की भुख बड़ी है, पदार्थों की भुख बहुत है, और ये तृष्णा की भुख कदे मिटदी नहीं। बेअंत दाता नूं प्राप्त करके भी मनुख भुखा ही रहिंदा है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, बड़ा वड्डा दुख है जीवन दे विच। शक्तिशाली जमदूत मौत दा दुख है। हर एक मनुख इस दुख दे विच तड़फ रहे, दुखी हो रहे, सारिआं नूं एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए। शरीर दे दुखां दा जिक्र सतगुरु ने चौथे नंबर ते कीता है, अखीर दे विच। इहनां दी कोई बहुत वड्डी महानता नहीं, मनुख शरीर दे दुखां नूं इन्ना कोई महान नहीं समझदा। जिहड़े जमदूत दा डर, मौत दा डर, तृष्णा दी भुख, विछोड़े दा दुख, इन्हां ने संसार दे अंदर जीवा नूं अत दा दुखी कीता होए। ते महाराज कहिंदे ने वैद न भोले दारू लाए, मनुख भुलिया होए संसार दे विच इन्हां तों बचण वास्ते अनेकां जतन करदा है, पर बचाओ नहीं हुंदा। किवें होवे? धन गुरु नानक देव महाराज कहिंदे ने भाई दुख विसारण सेवया, सदा सदा दातार जिहड़ा सारे दुखां नूं नाश करन वाला है, ओनू चेते कर, याद कर, ये सारे दुख मिट जाणगे। सदा सदा दातार, क्योंकि वह सदा ही सारिआं नूं दातां देण वाला दातार है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। ए रहाओ दी पंक्ती है, और इस शब्द दे अंदर चार बंद ने रहाओ वाले, चार पंक्तियां रहाओ दियां। पहली पंक्ति साहिब कहिंदे ने, साहिब मेरा नीत नवा, जिहड़ा मालक है, साहिब कहिंदे ने मालक, ओ रोज़ ही नवा है, नवा भाव हमेशा मौजूद है, सदा सदा दातार, सदा ही दाता देण वास्ते, पदार्थ देण वास्ते, बख्शिशां करन वास्ते, इवें रहमतां कर रहा है, बख्शिशां कर रहे जिवें अज पहली वार दात दित्ती होवे। पिछलियां दातां नूं कदे चितारदा नहीं, याद नहीं करदा, इस करके वह नेता प्रति नवा है। साहिब मेरा नीत नवा, रोज़ नवे रूप दे विच बख्शिशां कर रहे, दातां दे रहे, जो कुछ दिता है उन्हां नूं चितारदा नहीं। अन दिन साहिब सेवियै, अंत छड़ाए सोए। दिन रात, अन दिन
दिन रात साहिब सेवीए उनु याद करिए उनु चेते करिए अंत छड़ाए सोए ओही सानू अंत वेले छड़ा सकदे उन अंत की है गुरबाणी नू विचारे समझे ये पता लगदे जीवन दा हर पल हर छिन हर घड़ी ए अंत समय जिहड़ा सुवास जिहड़ा पल साड़ी जिंदगी दे विच चल रहे ए हर पल हर घड़ी ए अंत समय मनुख भावें इस भरम दे विच जिउंदे इस भुलेखे दे विच रहिंदे भई अंत समा कोई होवेगा पर महाराज दी बाणी ने समझाया साढ़े जीवन दे विचों जिहड़ा समा लंघ रहे निकल रहे हर पल हर घड़ी ए अंत समय ते इस जीवन दे अंदर जिहड़ा समा साड़ी जिंदगी दे विचों लंघ गया ए अंत समय ते इस दा भाव हर वेले सानू बंधना तो मुक्त कराउण वाला बंधना तो छड़ाउण वाला कौन है उहनू याद करिए उहनू चेते करिए आनंदन साहिब सेवीए अंत छड़ाए सोए सानू छड़ाउण वाला अंत वेले भाव हर वेले ओ अकाल पुरख परमेश्वर आप है। सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए हे मेरी जिंदे तो सुन केवल इस संसार सागर तो पार करन वाला ओ प्रभु परमेश्वर आप है उस तो बिना होर कोई नहीं और सदा ही वो दया करदा है दयालु है रहमतां करन वाला है। महाराज कहिंदे ने दयाल तेरे नाम तरां हे दयालु परमेश्वर परमात्मा मैं तेरिया रहमतां दा सदका तेरे नाम दी बदौलत तर सकदा हाँ पार लंघ सकदा तेरे तो बिना होर कोई मेरे कोल जुगत नहीं तरीका नहीं इस भाव सागर तो पार होण दा इस संसार सागर तो पार होण दा इसे दा डर है मनुख दे जीवन दे विच यही सब तो वड्डा भय मनुख दी जिंदगी दे अंदर ते महाराज इस बंद दे विच कहिंदे ने हे प्रभु तू दयाल है तू बख्शिशां करन वाला है तेरे नाम दे नाल लग के नाम दे नाल जुड़ के जिवें बेड़ी दे विच सवार हो के मना मोही पार सागर तो पार लंघ जांदे मनुख भी अवगुणा दे नाल भरिया होए पापां दे नाल भरिया होए पर जे किते गुरु परमेश्वर दा मिलाप हासिल हो जाए ते साहिब कहिंदे ने तरिया जा सकदा हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पौण लगै मत जाई सनमुख सिद्ध भेटण को आए निह चौदे वड़ियाई गुरतार तारण हारे तारण वाला गुरु आप है सतगुर बोहित हर नाम है परमेश्वर दा नाम इस भव सागर तो पार कर सकदा हर वेले हर घड़ी इसलिए साहिब कहिंदे ने तेरे नाम दे नाल मैं जुड़ जावां दयाल तेरे नाम तरा नाम दे नाल लगियां तरिया जा सकदा सद कुरबाने जाओ इसलिए मैं तेरे तो बलिहार जाना कुरबान जाना ते जिस परमेश्वर तो कुरबान सदके बलिहार जाना है उस दी होंद की है। साहिब कहिंदे ने सरबं साचा एक है दूजा नाही कोए ता की सेवा सो करे जाको नदर करे हमेशा लई सच सरबंग हर समय दे विच भूतकाल भविख
वर्तमान हर समय दे विच जो सच है वो केवल एक परमात्मा है, बाकी उस तो बिना सब कुछ नाशवंत है। दूजा ना ही कोई, वह तो बिना होर दूसरा कोई नहीं। और उसकी सेवा दे विच वो लगता है, भाव ओ सेवा करता है, ओ नाम दे नाल जुड़दा है, जा को नदर करे, जिसते गुरु आप नदर करे, बख्शिश करे, रहमत करे। और जदों गुरु की कृपा होंदी है, बख्शिश होंदी है, फिर ये भरोसा बन जाता है, तुद बाज प्यारे केव रहा। ये भरोसा उदों बनता है जदों गुरु की बख्शिश हो जाए कि हे प्रभु तेरे तो बिना मैं रह नहीं सकता, तेरे तो बिना मेरा जो जीवन बतीत हो रहा है ये व्यर्थ है। तो जदों तक गुरु की नज़र नहीं, बख्शिश नहीं, मनुख ये समझदा है बस संसार दे विच पदार्थां दे मोह दे अंदर जीवन नू बतीत कर लवां। और इस विछोड़े दा दुख मनुख दे अंदर प्रगट भी नहीं हुंदा। ये तां जदों आप कृपा वरतदी है फिर मनुख दे अंदरों ये अरदास ये बेनती निकलदी है, तुद बाज प्यारे केव रहा, तेरे तो बिना किवें रह सकदा, सा वडियाई देहे जित नाम तेरे लाग रहा। वैसी कृपा कर, बख्शिश कर, ओ वडियाई दे, मैं तेरे नाम दे नाल जुड़िया रवा, तेरे नाम दे नाल मिलिया रवा, तेरा नाम मेरे हिरदे दे विच वस जाए, क्योंकि दूजा ना ही कोए, जिस आगे प्यारे जाए कहाँ, तेरे तो बिना होर तेरे जया दूसरा कोई नहीं। जिस अगे मैं बेनती करा, अरदास करा, और मैनु इस भवसागर तो पार करा दवे। अखीरले बंद दे विच सतगुरां ने बख्शिश कीती, सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोए। सेवी कहिंदे ने सिमरना, चेते करना, याद करना। किनों याद करना? जिहड़ा मालक है। सेवी साहिब अपना, अपने मालक नूं याद कर, अपने मालक नूं चेते कर। अवर न जाचो कोए, जाचो जाचना करनी, मंग करनी। हे प्रभु तेरे तो बिना मेरी होर मंग कोई नहीं, होर मैं मंगया कुछ नहीं, केवल तेरे नाम दी मंग है। और मंग ए है तू ऐसी कृपा कर, नानक ताका दास है, कि नानक तेरा दास बन के अरदास कर ले, बिंद बिंद चुख चुख होए। फिर साहिब कहिंदे ने उस मालक तो, उस परमात्मा तो बिंद बिंद खिन खिन हर पल बलिहार जाइए, सदके जाइए, कुरबान जाइए, बिंद बिंद चुख चुख होए हर पल हर घड़ी। और मेरे शरीर का हर अंग चुख चुख, हर शरीर का टोटा टोटा तेरे तो सदके है, तेरे तो बलिहार है। साहिब तेरे नाम विटों बिंद बिंद चुख चुख होए। दो पंक्तियां दे अंदर सतगुरु ने ये शब्द वरते ने कि मैं हर पल हर घड़ी ते मेरे शरीर का हर अंग तेरे तो कुरबान है, तेरे तो बलिहार, तेरे तो सदके। बस अरदास करन दे विच यही भावना जगयासू दे अंदर प्रगट होंदी है कि अपने सतगुरु अपने मालक तो बलिहार जा सकीए, कुरबान जा सकीए। और जिस दे नाल अंदर दा नेह प्यार होवे उस अगे अरदास करन लगियां ये बोल प्रगट होंदे ने, ये भावना प्रगट होंदी है कि हे सतगुरु मैं तेरे तो कुरबान हाँ, मैं तेरे तो बलिहार हाँ,
ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: राष्ट्रपति
1: माता पिता सतमीत न पाई
0: मनुहा नाम तेरे संग सहाई
1: महाप्यान दूत जम दले
0: तह केवल नाम संग तेरे चले
1: मुश्किल होवे अत भारी
0: हर को नाम खिन माए उधारी
1: अपने चरण करत नहीं तरे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख कनेरे
1: सगल सृष्टि को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोरी वंदन परे
0: हर का नाम जपत निस्तर है
1: अंत माया रंग तिख न बजावे
0: हर का नाम जपत अगावे
1: जेह मार्ग एह जात अकेला
0: तैहा नाम संग होत सहेला
1: ऐसा नाम मन सदा ध्याइए
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए
1: टूटत नहीं कोट लख वाही
0: नाम जपत तै पार पराही
1: अंत विघ्न जाय आए संघारे
0: हर का नाम तत्काल उधार है
1: नानक जोन जन्मे मर जाम
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: मैला मन कबू न धोवे
0: हर का नाम कोट पाप खोवे
1: ऐसा नाम जपो मन रंग
0: नानक पाइए साध कै संग
1: जाहे न कोसा
0: हर का नाम हुआ संग तोसा
1: जह पैडे महा अंध गवारा
0: हर का नाम संग उजियारा
1: पंथ तेरे को न सियानु
0: हर का नाम तह नाल पछानु
1: महा भयान प्रताप तबो काम
0: तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम
1: जह त्रिखा मन तुझ अकरखे
0: तह नानक हर हर अमृत वरख है
1: संत जना की वर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: जस करत संत दिन रात
0: हर हर औखद साध कमात
1: जन के हर नाम निदान
0: पार ब्रह्म जन की नो दान
1: तन रंग रते रंग एके
0: नानक जन के बिरत बिके
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
0: हर के नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत करे न भंग
1: हर का नाम जन की बड़ियाई
0: हर के नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जगत कछ नाहि वियोग
1: राता हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन के भाल खजीना
0: हर तन जन को आप प्रभु दीना
1: हर हर जन के ओट सतानी
0: हर प्रताप जन अवर न जानी
1: जन हर रस राते
0: सुन समाद नाम रस माते
1: आठ पहर जन हर हर जपे
0: हर का भक्त प्रकट नहीं छपे
1: हर की भक्त मुक्त भव करे
0: नानक जन संग केते तरे
1: पार जाते हो हर को नाम
0: काम तेन हर हर गुण गाम
1: सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम संत दत दुख लथा
1: नाम की महिमा संत रिद बसे
0: संत प्रताप दत सब नसे
1: संत का संग बड़ भागी पाइए
0: संत

0: जावे।
1: जो ठाकुर सत सदा हजूरे
0: ताको अंधा जानत दूरे।
1: जाकी टहल पावे दरगह मान
0: जिसे बिसारे मुग्ध जान।
1: सदा सदा एहु भूलन हार
0: नानक राखन हार अपार।
1: रतन त्याको डी संग रचे
0: साथ छोड़ छोड़ संग बचे।
1: जो शरण सो अस्थर कर माने
0: जो वन सो दूर पराने।
1: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
0: संग सहाय तिस पर हरे।
1: चंदन लेपो तारे तोए
0: गर्द प्रीत पासम संग होए।
1: अंत कूप में पतत विकराल
0: नानक काढ़ लेहु प्रभु दयाल।
1: करतूत पशु की मानस जात
0: लोक पचारा करे दिन रात।
1: बाहर पेख अंतर मल माया
0: छप सनाए कस करे छपाया।
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंतर व्यापे लोभ स्वान।
1: अंतर अगन बाहर तन स्वाह
0: गर्भाधर कैसे तरे अथा।
1: जाके अंतर बसे प्रभ आप
0: नानक तेजन सह समात।
1: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
0: कर कह ले ओढ़ निभावे।
1: कहां बुझारत बुझे डोरा
0: निसके ये तो समझे पूरा।
1: कहां बिसनपद गावे गोंग
0: जतन करे तो भी सर्पंग।
1: कह पिंगल पर्वत पर पवन
0: न्यायी हो तुम्हा उस गवन।
1: करतार करुणा में दीन बेंती करे
0: नानक तुमरी कृपा करे।
1: संग सहाय सो आवे न चीत
0: जो बै आई ता सुप्रीत।
1: बलुआ के ग्रह पीतर बसे
0: अन्न केल माया रंग रसे।
1: दृढ़ कर माने मने पतीत
0: काल आवे मूढ़े चीत।
1: बैर ब्रोध काम क्रोध मोह
0: झूठ विकार महालोत्रु
1: याहू जोगत बिहाने के जन्म।
0: नानक राख लेओ आपन कर कर्म
1: तू ठाकुर तुम पहर दास।
0: जियो पिंड सब तेरी रास
1: तुम मात पिता हम बारिक तेरे।
0: तुमरी कृपा में सुख कनेरे
1: कोई न जाने तुमरा अंत।
0: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
1: सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी।

राष्ट्रपति एक वास्त काल में कोट गवावे तो मूड़ा को कहा करे ताको की जय सद नमस्कारा सर्व सुख ताहु मन बूठा सर्व थोक नानक तिन पाया खात पीत बाते अंध उलास अज्ञानी मन रोस करे बहुत उसका विश्वास न होवे प्रभु की आज्ञा माने माथे नानक साहिब सदा दयाल सर पर होवत जान नेत ओ बिन से ओ मन पछतावे लपट रोत अंध अंधार ताको हाथ न आवे के कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रंग संग माया पी खस्ता मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या हस्ता दर को हिर है मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या बास लेत विकारा सफल देह नानक हर हर नाम ले साच बिना कह होवत सूचा मुख आवता के दुर्गंध मेघ बिना जो खेती जाए जो कृपन के निरार्थ दाम नानक ताके बल बल जाओ मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत बाहर भेख न काहू पीन आवत जावत जन्मे मरे तिसकी सीख तरे संसार नानक उंजन चन्न पराता अपना किया आपे माने किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा सब कर जाने आत्म की रहत थान तनंतर।

0: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे
1: सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद वसे सुख मंदिर
1: सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याये ध्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पडंबर हडावे जय प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ पैर ताका जस गावी
0: जय प्रसाद सबको मन
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दरगह मान पावे
1: नानक पद से ती कर जावे
0: जय प्रसाद आरोग कंचन देहि
1: लेव लावो तिस राम स्नेहि
0: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन सारनी पर ठाकुर प्रभु ताके
0: जय प्रसाद उसको जय प्रसाद उसको न पहुँचे
1: मन सास सास सिमरो प्रभु चे
0: जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भक्त करे
0: जय प्रसाद अपूखन पहरी जय
1: मन ते सिमरत के आलस की
0: जय प्रसाद असवास्त सवारी
1: मन ते प्रभु को कभु न मसारी
0: जय प्रसाद बाग मेल खितना
1: राख प्रोए प्रभु अपने मना
0: चिर तेरी मन बनत बनाई
1: उठत बैठ सत्य से त्याई
0: किसी त्याई जो एक लख
1: नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करे पुन बहुदान
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: तिस प्रभु को सास सास चतारी
0: जय प्रसाद तेरे सुंदर रूप।

0: नानक जस कह।
1: जय प्रसाद सुने कर्ण नाद,
0: जय प्रसाद भेखे विस्माद,
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
0: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
1: जय प्रसाद परम गत पाव है,
0: जय प्रसाद सुख सह समाव है।
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लाग,
0: गुर प्रसाद नानक मन जाग,
1: जय प्रसाद

0: साध के संग मुख उज्जवल होत
1: साध संग मल सगली को
0: साध के संग मेटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सुज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभु नीरा
1: साध संग सब होत नबीरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने को परानी
1: नानक साध की शोभा प्रभु महे समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग अभय पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग सबकी रेन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग अस्तित मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन समीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग किस जो नहीं बैर
1: साध के संग न भीगा पैर
0: साध के संग ना ही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग ना ही होताप
1: साध के संग करे सब
0: आपे जाने साध बढ़ाए
1: नानक साध प्रभु बने आए
0: साध के संग न कभु तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस्त अगोचर लह
1: साधु के संग अजर सह
0: साध के संग बस थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल औदारे
1: साध संग साधन मीत कुटुंब निस्तारे
0: साधु के संग तन पावे
1: जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सफल जन्म
0: साध के संग ना ही कछ काल
1: दर्शन पेट होत निहाल
0: साध के संग कुलूख धरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इहा उहा सोहेला
1: साध संग विशरत हर मेला
0: जो इच्छा सो ही फल पावे
1: साध के संग न व्यर्था जावे
0: पार ब्रह्म साध हृदवस है
1: नानक उतरे साध सुन रस है
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर निस्तर है
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग कट कट डीठा
0: साध संग पे आज्ञा कारे
1: साध संगत पे ही हमारी
0: साध के संग पिटे सब रोग
1: नानक साध पिटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जान है
1: जेता सुने तेता वख्यान है
0: साध की उपमा तह गुंते दूर
1: साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का ना ही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंचते

0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माह ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप

0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बठाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,

0: तमस को मंदा
1: गुर प्रसाद भिक्षा पर हरै
0: मन की वासना मनते डरै
1: इंद्री जित पंच दोखते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा पारस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विषन की माया ते होए भिन्न
1: कर्म करत होवे नह कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बाछै
0: केवल भक्त कीर्तन संग राछै
1: मंतन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ है अवरा नाम जपावे
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: ते बिनसे सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: संग पापा मल खोवे
0: जिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मंतन अर्पे विसल प्रीत
1: के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन पर बुद्ध है
0: राम नाम आत्म में सोते
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो

0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट तीर्थ वासी,
0: कई कोट वन पर में उदासी,
1: कई कोट वेद केसर होते,
0: कई कोट तपीश्वर होते,
1: कई कोट आतन ते अंतारे,
0: कई कोट का काम विचार है,
1: कई कोट नवतन नाम ते आवे,
0: नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट पै अभिमानी,
0: कई कोट अंत अज्ञानी,
1: कई कोट कीर्तन कठोर,
0: कई कोट पेगा दमने कोर,
1: कई कोट पर
0: दुख न करे,
1: कोट माया श्रम,
0: कई कोट पर देश

सोए रहे दिन रात, कभू सर्व की हो तरवाल, कभू भिखारी नीच का साजा, कभू पला पला कहावे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू सिर साधक मुख ज्ञान, अनक जोन पर मैं पर मिया, जो प्रभावे तिवे निजावे, नानक दूजा अवर न कोए, उस स्थान ते बहुत न आवे, उस स्थान का नहीं विनाश,

संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन शोभा देहीन, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, नानक सत्संग निंदक भी तरे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन त्रिग जो करवाए, संत के दुखन सब को शले, संत के दुखन नीच निचाए, नानक संत पावे ता कोई बिगत पाए, संत का निंदक खंड करना पाए, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सदा वियोग, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी सदा भिखारी, संत के दुख ना सुख ते डरे, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे, संत का दुखी उजड़ पाइए, जो सास बिना मृत की लोथा, आपन बीज आपे ही खाए, नानक संत पावे तले उवार, जो जल में मछली तड़फड़ाए, जो पाव की दर नहीं त्रापे, जो गुआर तेल खेत माए दुहिला, संत का दुखी सदा मिथ्या कहत, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी ना मरे ना जवाइए, संत का दुखी चले निराशा, जैसा पावे तैसा कोई होए, नानक जाने साचा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार, जिसे त्यावो सास ग्रास, जैसा करे तैसा को थिया।

0: दंडन हर गोपाल
1: सगली
0: चिंता जिस मन माहे
1: तिसते व्यर्था कोई नाही
0: रे मन मेरे सदा हर जाप
1: अवनासी प्रभ आपे आप
0: अपन किया कछ न होए
1: जेसो प्राणी लोचे कोई
0: इसमें नाही ते रह किस काम
1: गत नानक जापे कर नाम
0: रूप मंत है नाही मोह
1: प्रभ की जोत सगल कट सो
0: है धनवंता होए क्या को गर्व है
1: जा सब किस किसका दिया दर्प
0: है असु राजे को कहावे
1: प्रभ की कला बिना कहता है
0: जे को होए बहे दातार
1: किसी जेन हार जाने का वार
0: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग
1: नानक सोजन सदा रोग
0: जो मंदर को थामे थम्मन
1: जो गुर का शब्द बने स्तम्भन
0: जो पाखान नाप चढ़ तरे
1: प्राणी गुर चरण लग निस्तरे
0: जो अंधकार दीपक परगास
1: गुर दर्शन देख मन होए बिगास
0: जो महा उद्यान में मार्ग पावे
1: जो साधु संग में जो प्रगटावे
0: इन संतन की बाछो तूर
1: नानक की हर लुच्चा पूर
0: मन मूर्ख का है मिल लाये
1: और लिखे का लिखिया पाइये
0: सुप्रव देवन हार
1: अवर त्याग तू किसे चितार
0: जो कुछ करे सोई सुखमान
1: भूला काहे फिरे अजान
0: ओम पस्तई तेरे संग
1: लपटरे और रस लोभी पताऊं
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पसे ती कर जाहे
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: तज अब मान ले हो मन बोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: लाद खेप संत हो संचाल
1: अवर त्याग बिकिया जंजाल
0: तन तन कहे सब कोए पारे
1: नानक ताके सद बलिहारे
0: चरण साध के तोय तोय पियो
1: हर प्रसाद को अपना जियो
0: साध की दूर करो स्नान
1: साधु पर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा बड़ भागी पाइये
1: साध संग हर कीर्तन गाइये
0: अनेक बिघन दे साधु राखे
1: हर गुण गाये अमृत रस चाखे
0: कोट गई संतो दर आया
1: सर्व सुख नानक ते पाया
0: मत को जी वालन हार
1: भूखे को देवता दार
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे
1: पर लिखे का लहना पाए
0: सब कुछ तिसका करने जोग
1: किसमें दूसर हुआ न होग
0: जप जन सदा सदा दिन रहने
1: सत्य उज निर्मल है करनी
0: हर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सोजन निर्मल किया
0: जाके मन गुरु की प्रतीत
1: इस जन आवे हर प्रभु जी
0: भक्त पग सुनिए तहलोए
1: जाके हृदय को
0: सच करनी सचता की रहत
1: सच हृदय सत्व कहत
0: साची दृष्टि।

0: भ्रमण में राख
1: मानु की तू प्रीत त्याग
0: परे नाही किशुक कोए
1: सर्व निरंतर को सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: कहर कबीर गहीर सुजाना
0: हार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा दान दयाल पसंद
0: साथ तेरे की चरनी पाओ
1: नानक के मन हियन राव
0: वर्षा पूर्ण सरना जोग
1: जो कर पाया सोई होग
0: हरन परन जा का नेत्र फोर

0: बस्त माहेले बस्त गडाई
1: ताको पिन न कहना जाई
0: बुझै बुझन हार बवेक
1: नारायण मिले नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रती
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने सांग
1: प्रभु का सेवक नाम के रंग
0: सेवक को प्रभु पालन हारा
1: सेवक की राखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभु

0: पाई,
1: अपने सेवक की आपत रखै,
0: ताकि गतमत कोई न लाखै,
1: प्रभु के सेवक को न पहुँचै,
0: प्रभु के सेवक उच्चे उच्चे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया,
1: नीकी कीरी में कल रखै,
0: बसम करै लस्कर कोट लाखै,
1: इसका शासन काड ताप,
0: ताको राखत दे कर हाथ,
1: मानस जतन करत बहु पात,
0: इसके कर्तव्य बिठे जात,
1: मारे न रखे अवर न कोई।

0: तंत्र प्रिय
1: नाम रतनजन गुरमुख पाया
0: इसके शवर नहीं दृष्टाय
1: नाम तन नमो रूप रंग
0: नमो सुखर नाम का संग
1: नाम रचो जन तृप्त
0: मंत्र नाम में नाम समाने
1: उठत बैठत सोवत नाम
0: कहो नानक जन के सदकाम
1: मूल हो जस सेवा दिन रात
0: प्रभु अपने जन की नी दात
1: करे फल तब के चाये
0: प्रभु अपने सो रह समाये
1: जो हुआ हो वसो जाने
0: प्रभु अपने का हुक्म पहचाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जान लो
1: आठ पैर प्रभु से हजूरे
0: कहो नानक से जल पूरे
1: मन मेरे तिन की ओर ले
0: मन तन अपना तिन जान दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व दुख का दाता
1: इसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्शन पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाड़

0: अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन तो श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रदान
0: जिस मन बसे सहोत निहाल।

0: संस्मृत मह देख
1: ससुर के तर में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: आप डोल कभु डोल
0: सर्व करा कर खेल खेल
1: बोल पाए गुणे मोल
0: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
1: तारे हो स्वामी ओत बोत
0: गुर प्रसाद परम का नाश
1: नानक दिन में हो विश्वास
0: संत जना का पीखन सब धर्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुन सब वचन
1: सर्व व्यापी राम संग्रचन
0: जिन चाहता तिसकी एह रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पियो ही
1: नानक दर्शन दे सब होही
0: आप सत किया सब सत
1: इस प्रभ ते सगली उत्पात
0: तिस पावेता करे विस्तार
1: तिस पावेता एकंकार
0: अनेक कला लखी नह जाए
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन निकट कौन कही है दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक तिस जने आप बुझाए
0: सर्व भूत आप बरतारा
1: सर्व नैना पेखन हारा
0: सगल सामग्री जा का तना
1: आपन जस आप ही सुना
0: आवन जानी खेल बनाया
1: आज्ञाकारी कीनी माया
0: सबके मत अल्प तो रहे
1: जो किस

0: प्रसाद दया प्रवतारी
1: नानक निभी कृप हमारी
0: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
1: सावधाने का कर चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब होए
0: सब ते उच्च पाए स्थान
1: बहु न होवे आवन जान
0: खातन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: हेम शांत रिद्ध नव निद
1: बहुत ज्ञान सर्व तय सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: सबके मध सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत्व

जिन तुम भेजे तिन्हे बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, निःचल राज कमाओ।

प्यार के में मिले जाए पूछो सुहागनी सुहागनियाँ केड़ियाँ हैं जिड़े प्रभु परमात्मा दे पह अंदर प्यार अंदर दिन राती डुबियाँ रहदियाँ जिन्हां दे जीवन का यह लक्ष्य है कि दिन राती आराधो प्यारे निमख ना की जय ढीला हुण दिन रात आराधन की गल ही चल रही है। भाई साहब जी ने भी आराधना नाम की गल की पर पातशाह भी कहते दिन राती आराधो प्यारे प्यारो निमख ना की जय ढीला। एक निमख वास्ते भी ढिला पड़ना हो आराधना की सिंपल गल कि आप बाहर जाइए ना बाजार के अंदर नाम की है आराधना की है क्योंकि वह तो अंदर है क्या उसनू असी हृदय के अंदर वसाया साड़ी याद विच वसना ही परमात्मा का नाम है। बाजार विच जाइए 100 बार असी अपनी जेब जड़ी है टटोली दी है मोबाइल है पास कि नहीं है पर्स है पास कि नहीं है साढ़े आसे पासे वाली चीज़ों असी हर 10 मिनट बाद टटोल दें साड़िया जेबा सेफ हैं साडे बैग सेफ हैं साडे पर्स साडे पास हैं एक मिनट के अंदर हाथ नाल टो के छड़ देने सेफ ठीक है कोल हैं। सच्चे पातशाह महाराज कहते बस यही सुरत नू टोलना है कि सुरत दे आले दे अंदर रब की याद है रब जी वसे ने। भाई साहब भाई वीर सिंह ने बड़ा सिंपल जिहा थॉट दिता वो कह लगे देख दिन दे चार पैर ने 6 तो 9 चार पैर आ जिहड़े पछम के इलाके ने इन्होंने घंटिया के अंदर दिन नू वंडिया ते एशिया का इलाका जिथे आपां जन्म लिया जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी का अवतार होया उत्थे पैरां दे विच गिणिया जांदा आप जी नू पता होएगा आपां पहला पैर दूजा तीजा चौथा गिणने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पातशाह कहिंदे पहला पहरा रैण कै बण जा रिहा मित्रा पहला पैर पहला पहरा फुलड़ा फल पी पछा रात हुण पैर किहड़ा पहला ये भी पता होना चाहिए। जदों बाणी दे अंदर आउंदा जां इतिहास अंदर आउंदा गुरु का अवतार तीजे पैर होया तीजा पैर कदों पहला पैर शुरू हुंदा 6 तो 9 इहनू संधि प्रात भी कहिंदे ने संध्या कुछ अक्षर जिहड़े ने ना उन्हां अक्षरां ने भी सानूं बहुत ज़्यादा उलझन च पा दिता कहिंदे जी संध्या नहीं बोलना ये जिहड़ा हिंदू का लफ्ज़ है कोई हिंदू का लफ्ज़ नहीं सुन संध्या तेरी देव दिवाकर अदपत आद समाई संध्या का मतलब है मिलाप गुरमत नूं समझांगे ना संधि फलाने जगह पर संधि होगी संधि फैसला संध्या की है फैसला फैसला कहते दिन अते रात जड़े हन अलोप हो गए ना उत्थे दिन है तो ना उत्थे रात है इन कहते संधि संध्या 6 तो 9 के अंदर जोड़ा समा आंदा इनू संध्या कहें आप सुंदर संध्या कई जगह गुरद्वारा साहब के बाहर लिखी होंगी 6 तो 9 9 तो 12 12 तो 3 3 तो 6 पातशाह गरीब नवाज इन्होंने पैरों के अंदर दिन नू वंडिया और साड़ी जीवनी नू पैरों के अंदर वंडिया जे दिन के चार पैर ने तो जीवन के भी चार पैर ने किहड़े पैर ने भला 3 ते आपां नूं नज़र आउंदे ने बाल जवानी अर बिरध फुल 3 अवस्था जान चौथा पैर जिहड़ा पहला है इहड़ी अवस्था किहड़ी सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज पहले पैरे

पांच तत् को तन रचियो जानो चतुर सुजान जेह ते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान घट घट मैं हरजू बसाए संतन कहो पुकार कहु नानक ते भज मना पौन दे उतर है पार सुख दुख जे परसाए नहीं लोभ मोह अभिमान कहु नानक सुनरे मना सो मूर्त भगवान।

जैसे जल ते बुद्ध बुदाय उपजै बिनसै नीत जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंदर कहु नानक बिनु हर भजन परत ताहे जम फंद जाओ सुख का

ठगौर नानक फासी गढ़ परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए, कहु नानक सुन रे मना हर भावै सो होए। जगत पिघारी फिर

जे सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो ए वस्त जी ने जाई नित नित रख और धारो तमस

तन मन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है अठौ नंदन। प्रथम राग पहरो वै करही पंच राग नी संग उचरही। प्रथम पहरवी बिलावली पुन्या की गावै बंगली। पुन असलेख की पही बारी पहरव की पांचो नारी। पंचम अर्घ दसाख सुनावै बंगालू मद माधव गावै। लालत बिलाव लगावही अपनी अपनी भांत वस्त पुत्र भैरव के गाव है। गायन पात्र द्वितीया मालकाओ सख आलाप है। संग रागनी पांचो थाप है। गौण करियर देव गंधारी गंधारी से उत उचारी तनासरी पांचो गाय मारा कौशक संगलाई मारू मस्त अग्निवारा प्रबल चंड कौशक उभारा। खाओ खटे ओ पौरानंद गाए अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठे तान कलोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव करी आई। बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै भार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए। चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान आए बिनोदा गावाए सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन्याई दीपक की बारी कशली पट मंजरी।

काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कह सावास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सावास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जसर प्रभ भाणा पावै आनंद अनहद वजह वाजे हरे आप गल में लावै तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो धुर लिखिया प्रवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुरु भाणा अपणै बै परिवार सदाया मत मैं पिछै कोई रोब सी सो मैं मूल न पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावै तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावै सतगुरु प्रतख होंदै बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछै कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्दे हो हर हर कथा पढ़े पुराण जीव हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पतल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जीव रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच नी साण जीव सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जीव मोरी पुत सन्मुख होया रामदास है पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जथा है गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु अण निवाया हर गुर है भाणा दी वडियाई